सतगुरु सरण संगत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट

हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावहो भिखमा नदी जाहे तरणी।

काम क्रोध नगर बहु परिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर रस साधना जानया, तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यो ज्यो चले चुभै दुख पावे, जम काल सह सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम सम्माणे, दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब

तन है तन है तन है गुरु गोबिंद सिंह जी तन है। तन है तन है तन है गुरु ग्रंथ साहिब जी तन है।

प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन आन दिन जागै। प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभु का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभु कै सिमरन तीरथ इसनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन

प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु कै सिमरन उधरे मूचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किछ सूझै, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से धनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमुहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए। हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहु कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण।

शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महाभयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम खिन मह उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद न परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जह मार्ग एहो जात इकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघन जह आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझ है प्यारा दूध, पर जो बन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साक सैन, मुख अप्याओ बैठ काओ दैन, इहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लियो तव नानक सीजै। जय प्रसाद तर ऊपर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै, जय प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला, जय प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग सा।

अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक पीना दे दस पीहिरले, तो मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ता कहो की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साहो अपनी दे रास, खात पीत बरतै आनंद उलास। अपनी अमान कछ बहुर सहोले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै, भौर उसका विश्वास न होवै। जिसकी बस्त तिसे

मिथ्या तन धन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद।

लालच बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पए सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा मिथा नाम बिना तन अंध मुख आवदता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जय कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछ

अवर उपदेश है, अवर उपदेश है आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता।

अष्टपदी जय प्रसाद छत ही अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस कौ सिमरत परम गत पावै जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लुभावै जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पत सेती घर जावै जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जय प्रसाद तुझको ना पहुँचै मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी

उठत बैठत सदत सहते आई ते सहते आए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै। जय प्रसाद करें पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद में।

जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फले, जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो हो, गुरु प्रसाद नानक मन जाग हो। जय प्रसाद तुम प्र

अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे सम्मानी। साध कै संग जो गोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस स्यों नहीं बैर, साध कै संग ना बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हम ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग वस्तु अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊंचै, साधु कै संग महल पहुंचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछड़त हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाव। साध कै संग न मानते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग कट कट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा बेद न जानै, जेता सुनै तेता बखियानै। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए। नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, जो बसुदा कौ खोदै कौ चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पावक का सह सुपाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय परगास, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय परगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही त

0: ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी कौ खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी साध जीवे निमरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण प्रदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार ब्रह्म ज्ञानी आभृंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी
0: श्लोक उतारे जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक हो अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पार्त्रय रूप न पेख है नेत्र साध की टहल संत संग हेत कर्ण न सुने काहू की निंदा सब थे जाने आपस कौ मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न मिशन की माया ते हुए भिन्न कर्म करत होवे नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्म में सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा

नानक उस पंडित का सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मह जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुगद पाथर का उतारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, कहूं जुगत कितै ना पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसन तन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर ज्ञान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोझी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, कैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी।

अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल। सलोक उस्तत करहें अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट मन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सुर होते कई कोट आत्म ध्यान धारहें कई

कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को ही रहे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश प्रमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जाख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरे सब हुते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन मैं जी मैं मरे, कई कोट बहु जोनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किच प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खो जनते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन

कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पय सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज समावे अपने जन का सास सास समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी करण कराम करने जोग जो तिस पावे सोई होग खिन में थाप्यो थापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे तार अधर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रहया समाई प्रभ पावे मानुख गत पावे प्रभ पावे ता पाथर तरावे प्रभ पावे बिन सास्ते राखे प्रभ पावे ता हर गुण पाखे प्रभ पावे ता पतत उदारे आप करे आपन बिचारे दोहां सिरियां का आप स्वामी खेले बिगसै अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुख ते क्या होए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावे सोई करे अन जानत बिखिया मह रचे जे जानत आपन आप बचे परमे पूला दह दिस तावे निमक माहे चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मह नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे जा कौ अपनी करे बख्शीस ताका लेखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म परगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीव देख बढ़ाई इसका बल नहीं इस हाथ करण कराम सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावे सोई फुन थियो कभू ऊंच नीच में बसै कभू सोग हर खरंग हसै

करै बहु भांत, कबहू सोय रहै दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू होय बहै बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू आप कीरत में आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यो प्रभ राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होय पंडित करे बख्यान, कबहू मौन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ इशनान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप जो सुअंगी दिखावै, जो प्रभ पावै तिवै न चावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए। कबहू साध संगत हे पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, जो जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होत सुआन, जो जाने मैं जो बनुमंत, सो होत बिष्टा का जंत, आपस कहो कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन परमावै, तन भूम का जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुक्त आग्या सुख पावै। धनवंता होय कर गरबावै, तृण समान कछ संग न जावै, बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस, पल भीतर काका होए बिनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन मैं होए जाए पसमंत, किसै न बदै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान।

कोट कर्म कराए हम तारे, श्रम पावै सगले बिर थारे, श्रम पावै सगले बिर थारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दर गह कहो कैसे गवै, आपस कहो जो भला कहावै, तिसै भलाई निकट न आवै, सर्व की रेंजा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसका सुख नाही कोए, जबे जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे कहो बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे, सहस खटे लख को उठता वै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै, अनक भोग बिख्या के करै, नह तृप्ता वै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बृथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए, करण करावन कर आपे आप, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सबके दूर सबहु कै संग, बूझे देखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक, मरे न बिनसै आवे न जाए, नानक सद ही रहया समाए, आप उपदेश है समझे आप, आपे रचिया सबके साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कश उसका ओह करने हार, उसते पिन कहो किछ होए, थान थनंतर एक कैसोए, अपने चलित आप करने हार, कौतक करे रंग आपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी, सच सच सच सब कीना, कोट मधे किने बिरलै चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, सलोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मह पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते कौ रखै न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जो लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीचाए, संत दोखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे, संत का निंदक महा अत ताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक कहो सर्व रोग, संत के निंदक कहो सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी कहो डान लागै, संत के दोखी कहो सब त्यागै, संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा भिकारी, संत का दोखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दोखी कौ नाही ठाओ, नानक संत पावै ता लए मिलाए, संत का दोखी अध बीच ते टूटै, संत का दोखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दोखी कौ ध्यान परमाइयै, संत का दोखी उजड़ पाइयै, संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा,
संत के दोखी की जड़ किछ नाहे अपन बीज आप ही खाहे संत के दोखी कौ अवर न राखन हार नानक संत पावे तां लए उबार संत का दोखी एवं बिललाए जो जल भी हुन मछली तड़फड़ाए संत का दोखी भूखा नहीं राजै जो पावक ईंधन नहीं तरापै संत का दोखी छुटा अकेला जो गुआर तिल खेत माहे दुहेला संत का दोखी धर्म ते रहत संत का दोखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस पावै सोई थिया संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दोखी कौ दरगह मिले सजाए संत का दोखी सदा सहताई है संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है संत के दोखी की पूजै ना आसा संत का दोखी उठ चले निराशा संत कै दोख ना तिष्टै कोए जैसा पावै तैसा कोई होए पया किरत न मेटै कोए नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसके ओ करना हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो सास गिरास सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेल आप करना हार दूसर कौन कहे बिचार जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़भागी नानक जन से सलोक तजो सियान सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पहो जाए अष्टपदी मानुक की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रह अघाए बहुना तृष्णा लाग आए मारे राख है एको आप मानुक कह किछ नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागै कोए उस्तत मन महकार निरंकार कर मन मेरे सब त्योहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सात संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग को बिंद मिटै पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार से तनवंत कनी संसार मन तन मुख बोलै हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछानै इत उत इहो सो जी जानै नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिनै निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सात संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मह सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह न लागे दुख जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै सो संत सुहिला नहीं डुलावै जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवक कहो किस ते डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल न किछ जन्मे न किछ मरे आपन चरित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप अनेक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किछ खंड तारण तार रहो ब्रह्मंड अलख अपेव पुरुख परताप आप जपाए नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार उधरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बड़ भागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख कौ उत्तम कर मान जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुपाए होवै सो होए करणै हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहे समाये ओ सुख निदान उन्हु बन आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार जाके सिमरन उधरी है नानक तिस बलिहार
अष्टपदी टूटी गंड नहार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अबनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ जा सब किस तिसका दिया दरबै अत सूरा जे को कहा वै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बह दातार तिस दिन हर जानेगा वार जिस गुर प्रसाद टूटै हौ रोग नानक सो जन सदा अरोग जो मंदर कौ थमै थमन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमन जो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास जो महा उद्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिरलाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तुक सहज तार जो कछ करे सोई सुख मान पूला काहे फिरे अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत सेती कर जाहे जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ता जग मान लेहो मन मोल राम नाम हृदय महतोल लाद के संतै संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए इह वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलिहार है चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध कौ अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड़ भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनेक बिगनते साधु रख है हर गुण गाए अमृत रस चख है ओट गही संतै दर आया सर्व सुख नानक तह पाया मृतक कौ जी वालन हार भूखे कौ देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका ओ करन है जोग तिस बिंदु सर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा जिस कौ नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तिहलोए जाके हृदय एको होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत सची दृष्ट साचा आकार सच वर्तै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किच त्रै गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस्ते परै नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एह अन्न राव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जानै होर आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए घर ताकै राज महराज जोग मैं जोगी तप मैं तपी सरग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगतैं सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जान है पूत सगल परोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावै से त्य गुण मह कज्जा कौ परमाए जन्म मरे फिर आवै जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेक करह एक रंग नाना बिरकिनो विस्थार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चरित करे खिन माहे पूर रहे पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ
नाम के तारे सगले जंत्र, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत, सत जा की बाणी, सत पुरख सब महेश माणी, सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत, सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए ते सह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत तेज हर जा कै हृदय प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपतता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मिथगत, जिसकी सृष्ट सो करण है हार, अवर ना बूझ करत विचार, करते की मितना जाने किया, नानक जो तिस भावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बूझा तिस आया स्वाद, प्रभ कह रंग राच जन रहे, गुर कह वचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख काटन हार, जा कह संग तरह संसार, जन का सेवक सोवट भागी, जन कह संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत, सत प्रसन्हार, पूजा सत, सत सेवदार, दर्शन सत, सत पेखनहार, नाम सत, सत ध्यानहार, आप सत, सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत, सत प्रभ बखता, सुरत सत, सत जस सुनता, बुजनहार कव सत सब होए, नानक सत, सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जाकै हृदय विश्वास प्रभयाया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पहते निरभउ होइ बसाना, जिस ते उपजा तिस माहि समाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई, बूझै बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर कहो सेवक जानै संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग, सेवक कहो प्रभ पालन हारा, सेवक की राखै निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सास सास समारै, अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत राखै, ताकि गतमित कोई न लखै, प्रभ के सेवक को ना पहुँचै, प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी में कल राखै, पसम करै लश्कर कोट लखै, जिसका सास न काटत आप, ताक और राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके करतब बिरथे जात, मारे न राखै अमर न कोए, सर्व जियां का राखा सोए, काहे सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी, बारंबार बार प्रभ जपीऐ, पी अमृत हु मन तन तृपीऐ, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किच अवर नाही दृष्ट आया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ता ने, मन तन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो हो जस जेबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करह भगत आत्म कह चाये, प्रभ अपने शिव रहे हैं समाये, जो हुआ हो अच्छो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जानो, आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर सियानब सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ,
अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख कौ नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हलक पलक सवारै, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारै। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहै। आपस कौ कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै। मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्ज रास। सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिस्वे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर कौ बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन जन मैं पार, ब्रह्म एक है आप नहीं कछ भरम। सहस सियानप लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बट भागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पुनीत, स्पर्शत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिस लय मिलाए। जेहबा एक उस्तक अनेक, सतपुरख पूरन बिबेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै। सत बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सोहोए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग ना लेप, मन में राखे हर हर एक। अंधकार दीपक पर गासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, अनंत पया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चुका निर्भउ होइ बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा धारी, साथ संग जप नाम मुरारी। थित पाई चुके परम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पियोही, कला तार जिन सगली मोही। अपने चरित पर आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, पय परगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनेक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चालै बिन भजन, बिख्या सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो धन सार। अष्टपदी संत जिना मिल करो बिचार, एक सिमर नाम आधार। अवर पाप सब मीत बिसारो, चरण कमल हृदय में उतारो। करण कारण सो प्रभ समर्थ, दृढ़ कर गहो हो नाम हर वथ। एहो तन संच हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन कौ चार कुंट उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख कौ नित बांछै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा कौ करै भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी। अनेक उपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर औखद लाए। सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बोधो हर कह नाए, दह दे स्थापित आवै ठाए। ता कौ बिघन न लागै कोए, जा कर दे बसै हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूरन होए आस, भगत पाए आत्म परगास। तित कर जाए बसै अबनासी, कौ नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो का चोका चा। आवा गवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। एवं रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार। अन को पावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बंशक नानक फल पाए। संग न चालस्ते रह तना, तुम क्या लपटा मैं मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्बनता, इनते कहो हो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो हो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझना बिगाना, नाम विसार नानक पछताना।
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੋਂ ਲਹਿਆ ਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਨ ਵਿਖ ਜਾਹੇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ਸਹਿਤ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਜ ਜਾਇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ ਹੋਏ ਅਚਿਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸਚ ਧਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਾਂ ਸੁਦਰ ਗਹਿ ਜੈਕਾਰ ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲ ਆਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ ਏਕ ਅਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ਮੰਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਪ ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ਏਕ ਅਰਾਧ ਪਰਾ ਛਤ ਗਏ ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭਰਾਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਵ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਪਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ ਧਿਆਵੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ ਸੁਪਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅੰਦਰ ਲਿਵਲਾਗ ਬੜਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਗਇਆ ਇਚ ਪੁੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਸਕਾ ਥਾ ਤਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ ਜਿਸਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦ ਨਾਮ ਮੂਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾਹੋਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਹਿ ਮੰਤਨ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ ਏਕ ਬਸਤ ਦੀ ਜੈ ਕਰ ਮਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ

किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार हो कछुना दृष्टि ता पाप पुण्य तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सोग कहो के सह व्यापत, जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होत परम, आपन खेल आप वर्ती जा नानक करना हार ना दूजा, जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुखत कहो किस कहो गनी, जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुपाए तब शिव सगत कहो कित ठाए, जब आप अपनी ज्योत तरह तब कवन निडर कवन कत डर, आपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अबनासी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहां बिनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अभिगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुपत किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौन मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो केस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संसमावे तह किसे भूख कवन तृप्तावे, करण करावन करने हार नानक करते का नहि सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद कतेब कहां को चीन, जब अपने आप ही आप उतार है तो सगन आप सगन कहां विचार है, जह अपन ऊंचे अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप, जय अचल अचेद अपेत समाया उहां किसह व्यापत माया, आपस कहो आप है आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश, जय एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय अपने आप पति आरा तह कौन कथा कौन सुनन हारा, बहो बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस कहो आप है पहुंचा, जय आप रचियो परपंच अकार तेह गुण मह कीनो विस्तार, पाप पुन्न तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान, अपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तव नानक एकै, जह अभिगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप, दुहु पाक का अपह तनी उनकी शोभा उन्हु बनी, अपह कौतक करे आनंद चोज अपह रस भोगन निर्जोग, जिस पावै तिस आपन

जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथा है, आप सुनना हार, आपे एक आप विस्थार। जातिस पावे ता सृष्टि उपाय, अपने पाणे लय समाये, तुम ते बिन नहीं किछु होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा कहो प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जान पाए, सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंत्र सब ताकै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखे तिस कोय न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस ताज अवर कहा को जाए, सब श्री एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानू साथ, गुण निदान बे अंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूर्ण पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहे व्याप। प्रत पाले जी अनुभव पांत, जो जो रचो सुति सहत्यात, जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हर नानक इक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक कौ सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जा कै मन बसिया निरंकार। बंधन तोर पए निर्वैर, अन दिन पूजे गुर के पैर, ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मिले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का यह सुआओ, आठ पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन सह अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हालत पलत दोइले सवार, राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपहु लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए, सच वापार करो वापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवै जाए। तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरै रख नुहार ते आए, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोई न पहुँचन हार। सिरि ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सुहोत निहाल, ताकै निकट न आवत काल, अमर पए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समिग्री एक स्कट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टा है, नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, देही में है इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तह नाद, कहन न जाई अचर्ज विस्माद, तिन देख्या जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत, तरण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बांतिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे, तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत मह देख, ससियर सूर नक्षत्र मह एक, बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले, सर्व कला कर खेल है खेल, बोल न पाई है गुण है अमोल, सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत, धार रहे स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मह एहो विश्वास।
संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी एह रहत, सत वचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख मानै, करण करावन हार प्रभ जानै, अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभते सगली उत्पत, तिस पावै ता करे विस्थार, तिस पावै ता एक अंकार, अनिक कला लखी नह जाए, जिस पावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखन हारा, सरल समग्री जाका तना, अपन जस आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कह मद अलिप तो रहे, जो कुछ कहना स्वापे कहे, आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे तां लए समाए, इस ते होए सुना ही बुरा, हो रहे कहो हो कि नै कछ करा, आप भला करतूत आतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, पोत पोत अपन संगराज, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एह जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान।

दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमुलीक लाल ए रतन सुनत

लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस एक राहे पत पवड़ियां चढ़िए होए कीस सुन गलां आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमान मनसोर जोर ना श्रुति ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रोती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया रूप रंग के वेस केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बिनोद कूड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकियां गलां कथियां न जाहे जे को कहा है पिछे पशुताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरा सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहि मरै न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करे आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिव कार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार आहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ताल घड़िए शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवें शपै शांत त्व प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज केह जय कोट इंद्र इंद्राण साहु साहान गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाय नमस्तंग अजाय नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग
नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अशेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सो एकै नमस्तं अनेकै नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरधाते नमस्तं निरकाते नमस्तं निरतूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सजोगे नमस्तं आरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगमे नमस्तस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारंग नमस्तं कृतारंग नमो सर्वथंदे नमो सात अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सोहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी शांत त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेप है अपेप है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजित है अपीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाद है अलाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निरलंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है कुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपहौणे अनंगी अनाथे नरसंगी प्रमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ती बेबूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रज वेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोग वेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रज वेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेथी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोग वेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इष्टनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तं निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृहदकर्ता अदो उर्द अर्धं अगं ओघर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्त उपराजी समस्त अस्तामं तेरा जो चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेह हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं कुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो शोक शोके
नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व विहितं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व यंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखजे अभिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज हे अवतूत रूप विशाल नाम धाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और न पेस जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दशा विशा हो फैलो अनुराग नाम काम बिहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्व मानु सर्वत्र मानु सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेको खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानहि पुर तीन लोक चौदह के बिखय जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जेह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचिव स्वयं भव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेशो अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकुत दायक काम आप रूप अमेक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन भंग नाथम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व घंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक नेत भक्त नित कूट सिमृत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनास अजान बाहु सहान साहु राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंग कालान काल अनपूत अंग अप अपंग गस्मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम नृपह निकाम आत दूत प्रचंड मेत गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चैचरी शांतो प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वारती चतर चक्र पारती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य जाचरी छंद न सत्राय न मित्राय न परमंग न पित्राय न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्राय न मित्राय परे हैं पवित्राय प्रथिसय अदृश्य प्रथिसय अदिशय अदृश्य अकृशय भगवती छंद त्व प्रसाद कातते कि अशेज देश है कि अभिज भिस है कि अगंज कर्म है कि अभंज भरम है कि अभिज लोक है कि अदैत सुख है कि अवतूत वरण है कि बेभूत करण है कि राजंग प्रभा है कि तरमंग तुजा है कि अशोक वरण है कि सर्वा अपर्ण है कि जगदंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रि है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनपाऊ अनुप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीने के एक है अधीन है कि रोजी रजा कह रही मेरे हक है कि पाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि अपबुल गुना है कि शाहन शाह है कि कारण कुनेद है कि रोजी दहंद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौन है कि सर्वत्र पावन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲ ਲਾਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸੁੱਖ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੁੱਖ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੇ ਆਏ, ਸਦਾ ਏਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਨ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰ ਆਏ, ਕਿ ਸਰਵੰ ਕਲੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਾਹੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਤਮਾਮਲ ਰਜੂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ੋ ਸਲਾਮੈ, ਸਲੀਕਤ ਮੁਦਾਮੈ, ਗਨੀਮਲ ਸਿਕਸਤੈ, ਗਰੀਬ ਉਲ ਪਰਸੁਤੈ, ਬਿਲੰਦਲ ਮਕਾਨੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ ਜ਼ਮਾਨੈ, ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ, ਰਜ਼ੂ ਅਲ ਨਿਧਾਨੈ, ਹਰੀਫ ਅਲ ਅਜੀਮੈ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈ, ਅਨੇਕ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਅਪੇਗ ਹੈ, ਅਪੰਗ ਹੈ, ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਬਿਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਗਾਧ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਓਮ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭਰਗੂ ਤ੍ਰਿਬਾਦੇ, ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਦੇ, ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ, ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਛੇਜ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਨਉਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਨੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਪਰਮ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਅਜਾਇ ਹੈ, ਅਬਾਇ ਹੈ, ਅਪੂਤ ਹੈ, ਅਤੂਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਅਭਗਤ ਹੈ, ਵਿਰਾਗਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ, ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਦੇਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਪੇਖ ਹੈ, ਅਟਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗੰਭ ਹੈ, ਅਨੀਰ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਨਿਤ ਹੈ, ਸੁਨਿਤ ਹੈ, ਅਜਾਤ ਹੈ, ਆਜਾਦ ਹੈ, ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ, ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ, ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ, ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ, ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ, ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ, ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ, ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ, ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ, ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ, ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦਾ ਗੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ, ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਪ੍ਰਮਾਤੇ, ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ, ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ, ਨਿਰਬਾਧ ਬਿਭੂਤੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਸਰਭੰਗੀ ਅਨੂਪੇ, ਨਾ ਪੋਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਸੱਤਰ ਨਾ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਤਾਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਜਾਤਾ ਨਾ ਪਾਤਾ, ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਜਾਇ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ੋ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫ ਉਲ ਸਿਕਨ ਹੈ, ਹਰਾਸ ਉਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਸਤ ਉਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਬਹਿਸਤ ਉਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਹਮੇਸ ਉਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਉਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਲ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸ ਉਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਹਮੇਸ ਉਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਲ ਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਉਲ ਇਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਉਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬਿਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਧੁਭਾਰ ਸ਼ੰਤੋ ਅਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ, ਅਰ ਬਰ ਆਗੰਜੋ, ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਂਜੋ, ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੁਨਮਨ ਸਲਾਮ, ਹਰ ਨਰ ਆਖੰਡ, ਬਰਨਰ ਅਮੰਡ, ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ, ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ, ਅਨ ਸ਼ੇਜ ਅੰਗ, ਆਸਨ ਅਭੰਗ, ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ, ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ, ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ, ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ, ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ, ਤ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ, ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੋ ਏਕੈ ਸਦਾ, ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ, ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਖਲਖੰਡ ਖਿਆਲ, ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਚੇਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਅਨਸ਼ਿਜ ਗਾਤ, ਆਜਿਜ ਨਾ ਬਾਤ, ਅਨ ਝੰਜ ਗਾਤ, ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ,
अन टुट भंडार अन ठट अपार आडीठ कर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद। करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्व नास्य है करुणा कर है विश्वम्ब्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है पार ते पार है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग ताम संग सात रूपे नमो परम तत्ंग अतंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र नादंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कश्री छंद। अजय अलय अपय अभय अबू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद। नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनिमे हरियं करियं क्रीमल रहिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुरारदन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बेदन्यावत शीसना जात बिचारे इते पए तो कहाँ पए भूपत अंत को ना गे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बांजित ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसक ही हाय राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के तम सिधारे तीरथ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सबै सुबिचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मुरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारे सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक
सो एक दिवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप खपेंगे पुण प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नान गजातिक दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बेसन सचिपत अंत फसे जम फास फरेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पागो ते नर फेर न देह धरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बाक ध्यान लगायो नाहत फ्रियोलिये सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो विख्यान सो बैठो कै ऐसे ही ऐसे सो बह सो बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धर्यो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा में काहू पशा को सीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पश को मेरतान कौ पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जागो श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जागो श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें कव्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट स्वै तुम कावो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परे वारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरन को आज संग्रह पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई आवरना त्याऊ जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दै मुझे उभरे है मरण काल का त्रास निवरे है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करे हो रक्षा राख ले हो मुहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेवकियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जशन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सिवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बाद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर प्रशानत चीटी ते कुंचरे अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशाने घाट घाट के फट फट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धार सब हूं जिते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेत जकिनी उत पूज खान बहुरे राच दिनी कहूं फूल राजा होय बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो, दोष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखे तहावै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नाह है, रक्षा होए ताहे सब काला, दोष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि नहर हो, ताकि ताप तनक मोहर हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख ते रहा, खड़क केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै ले हो उबारी, सर्व ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, केले बेख सकल देह को हरता, दोष्ट दोखियन को शाय करता, श्री अस तुज जब पय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फाल पावे सोई, दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल, सुने गुंग जो जाहे सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहा है। चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस फोन तीन कहि जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा, सोइया पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को, आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने ओ, सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जाने ओ, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहे ओ सब तो हे बखाने ओ, दोहरा सगल द्वार कौ छाट कै, गहे तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार, सगल द्वार कौ छाट कै, गहे तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्द ता गावहो हरि केरा, मन जिने वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा, कार्य सब सवारना सबना गला समरथ, स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा है, घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कह मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुरबान कीता गुरु विटहाओ, जिस दियां ए वडियाईयां, कहे नानक सुनो संतो हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया, तुद जिन काओ से नाम हर खै लागे, कह नानक तह सुख हुआ, ते तुकार अनहद वाजे,
साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजा हो क्या करे विचारिया, तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया, ए सुनाओ हुर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया, कहे नानक लिवै बाजा हो क्या करे विचारिया। आनंद आनंद सब को का है, आनंद गुरु ते जानिया जानिया, आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल वेख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदर राहों जिनका मोह टुटा तिन कर शब्द सचै सिवारिया, कहे नानक इहो आनंद है आनंद गुर ते। गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिना भाणा पावे, कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया, आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया, कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, पावे ता सो जन दे जिसनों होर क्या करे विचारिया, एक भरम भूले फिरे दहें दे सो एक नाम लाग सुवारिया, गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे, कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आव हो संत प्यारे हो अकथ की करै कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है, तान मान तान सब सौंप गुर को हुक्म मन्या पाई है, हुक्म मने हो गुरु केरा गावो सची बाणी, कहे नानक सुनो संतो कथे हो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई कि नह ना पाया, चतुराई ना पाया कि नह तू सुन मन मेरे आ, ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया, कुरबान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई कि नह ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले, साथ तेरै चलै नाही किस नाल क्यों चित लाईऐ, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। आगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंत न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है, जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण, आख है ता वेख है सब तू है जिन जग तू उपाया, कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सचा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय एक वेख पर सण आया, लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया, कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल निराली चाला निराली, भगतां केरी विखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एक मार्ग जाना, गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली, ज्यों तू चला है तिव चला है स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चला है तिव चला है जिना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे, जिसनु कथा सुनाहे अपने से गुरुद्वार है सुख पावहे, कहे नानक सचे साहेब ज्यों पावै तिवै चलावहे, एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला, सतगुरु सुनाया एहो तिन कह मन वसया, जिन तुरहों लिखिया आया, एक फिरै कनेरे करह गल्लां गल्ली किने ना पाया, कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया, पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटंब सहत स्यों पवित संगत सबाइया, कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज न उपजै बिन सहजे सहसा न जाए, नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए,
सहसे जियो मलीन है के तसंजम धोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर सो रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजय एहो सहसा एव जाए जी ओह मैले बारोह निर्मल जी ओह ता मैले तिनि जन्म जूह हारिया एह तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनह नाही फिरै ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनि जन्म जूह हारिया जी ओह निर्मल बारोह ता निर्मल जी ओह निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिने खटिया भले से वण जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे ता सनमुख सिख कोई जियो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मा समाले आप छड सदा रह परण गुर बिन आवर न जाने कोय कहे नानक सुनो संत हो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे मुक्त न होर थै कोई पुछो बबेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो विण सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावहो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी त कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करे रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पाए रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सस्यों लिबलाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार ना जानी गुरु बाजहो ततै सार ना जानी किह गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन बिहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनु अन दिन हर लिब लागे जागत रहन बिहानी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अगन मैं आहार पहुंचावे ओस नो क्यों पोहे न सकी जिस नो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया अगन सब इको जेही करता है खेल रचाया जात इस पाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी त्रिशना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लेव लागी तिने विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए किसै विटहो रहे लोक विल लाए ऐसा सत गुर जी मिलै किसनो सिर सौंपिया विचहो आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहा है हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुर ते रास जाने
ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਲਾਹ ਕਟੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਬਣਜਾਰਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਤਿਤੈ ਜੇ ਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੈ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਆਏ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅੰਨ ਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਆਨ ਦਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸੁਮਾਣੀ ਸਾਚੋ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਵਹੁ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਵਨਿਦ ਤੇ ਸਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹੇਲਾ ਸਾਚੇ ਘਰ ਗਾਵਹੋ ਗਾਵਹੋ ਤਾਂ ਸੋਹੇਲਾ ਘਰ ਸਾਚਾ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹਿ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹਿ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹਿ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹੇਲਾ ਸੱਚੇ ਘਰ ਗਾਵਹਿ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ

बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे, जाकी प्रभागे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासाय हुई सहाय। हर जुन हर गोविंद नाओ सिमरओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है, जस जठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थाई होवो जी सहाय। दसा ही पातशाहियां दी जागदी जोत, बाणी के बोहित चावर, ताकत शत्र दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ। दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारिया, चौहान साहिब जादिया, चालिया मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां ने तेरा नाम जपया। वंड छकिया देख चलाई, तेग वाही देके अंडिठ कीता, तिना प्यारिया सच्चियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद पटवाए, खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन, आरिया नाल चिराए, गुरुद्वारां दी सेवा हित कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिखी सिदक केसा स्वासा संग निभाया, तिना सिंघां सिंघणियां भुचंगी बच्चियां दी नाम दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चेत आवै जी, नाम चेत आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब, तहां तहां रक्षा रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसा दान।

बिन सतगुर सेवे किने न पाया, मन मुख भोंक मोए बिल लाई, आव है जाव है ठौर न पाव है, दुख मह दुख समाई। गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साच समाई।

0: जिन हर राख्या उर तारा, नानक तिन कै सद बलिहार। जिन हर राख्या उर तारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा, कर पहला, तेतु की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लए हर जियो। हरनाक्ष मार पचाया, गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।
1: तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन पवित्र हुक्मनामा, सुरठ महला तीजा, कर पहला। धन गुरु अमरदास महाराज जी सुरठ राग के अंदर भगतां दी अते भगती की वडियाई दस रहे हैं, तो परमात्मा के गुणों का गायन कर रहे हैं कि हे वाहिगुरु, यह तेरी वडियाई है, तू अपने भगतां नूं आप ही नाम जपाउंदा है, अते अपने भगतां नूं अपनी शरण विच बिठा के उन्हां दी पैज भी तू ही रखदा है। सतगुरु जी कृपा करन, सानू सारिआं नूं नाम दी दात, भगती दी दात बख्शिश करन, गुरु चरणां विच जुड़ के परमात्मा दे गुणां दा गायन कर सकीए। सो सतसंगत जी, हुण साडे गुरुद्वारा साहिब दे प्रोग्राम अनुसार आसा दी वार दा प्रोग्राम समा है जी, 7 तों 8:30 बजे तक। सत्कारयोग भाई हरभजन सिंह जी लहरी, जिन्हां दा जत्था आसा दी वार दे कीर्तन सरवण कराउणगे, उन्हां तों उपरंत भाई कुलदीप सिंह जी खालसा दमदमी टकसाल वाले, उन्होंने हुक्मनामे की व्याख्या भी 8:30 तों 9 तक सेवा करनी है जी। फिर सो इतनी बेनती प्रवान करनी है, प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बवाड़ जू सुजे अंदर खेत खेते अंदर छुटया कहो नानक सौना फलिए फुलिए बपड़े ही तन बेच सवा पौड़ी अपी नए अब साजी।

सच्चे तुदाखै लख करोड़, सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच त्यान सच, जो मर जमे सो कच नी कच महला।

ना गले टूडिए कतना कर सार करम लै ता पाई है और एक मत हुक्म कुवार पौड़ी नदर करे जी अपनी।

0: सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मंचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू मांधानिया अनगा पंखी पौंदिया लैना सा सूए चाड़ पवाई जंत नानक पौंदिया गणत नान
1: बंधन बंद पवाए सोए पै कृतन के सब कोई नच नच हसे चले से रोए उड़ना जाई सिद्ध न होए

मुसलमाना सिर्फ सरयत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला दर्शन रूप पार तीर्थ ना वैरचा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन

0: चार मूर्ख पंडित को एक मत हो जा संजय कर प्यार धर्मी धर्म करेगा वह वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने छठ बह कर बार सबको पूरा पे हो वह घट न कोई अख पत परवाना पिछे पाइये नानक तोलिया जापे महला पहला
1: नानक सच्चा विखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सोए अगै जात ना जोर है अगै जियो नमे जिनके लेखे पत पवे चंगे से के पौड़े तुर कर्म जना को तुत पाया।

दुख दारु सुख रोग पया जा सुखताम न होई। तू करता करुणा मैं नाही जा हो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात में जो जोत में जाता कलकला पर पूर रहया। तू सच्चा साहिब सिर्फ सुवाल्यो।

नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा हो जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझहता है सजुग रस संतोख का धर्म गैरथवा हो त्रेतरथ जत का जोड़ गैरथवा हो द्वापर तपे का

0: होय पुरण सुटिए भी पृपये होर नानक तग न तुटई जे तग होवे जोर मोहल्ला पहला
1: नय मन पत उपजाय साला ही सच सूत दर गंदर पाइये तग न तूर सूत मोहल्ला पहला।

0: नायक से कहरी बाजी
1: पंडोही
2: पंडोही पंडित उपजै पंडै बाज ना कोए नानक पंडै बाहरा एको सच्चा सोए
0: जित मुख सदा सलाइए।

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाज गोदी पाचे दशमी प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लैते आए फिर अंगद कुरते अमरदास रामदास सिवे सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कान हुन जावे ताए सब ताई वे सहाय। दसवें पाछा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय। दसा पाची दे पुत्रात्मा शुरू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार दा ध्यान करके हर सस बोलो जी वाहे गुरु। गरीब रवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वन छकिया देख चलाई ते वाहे देख के ढेर कीता तेना प्यार सत्यारे ने कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म ए सी दित्ते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लवाईया चरखियां से चढ़े आरे नचराए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा सिखी सिद्ध के सत्संग दवाया ते नानी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। पहिया दस दस पर गुरुद्वारा का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेताव है चित आमण कासत कासत सुख हो गए जहां जहां गुरु खालसा जी साहब साहब रखे रियायत देख देख की फतेह ब्रिद की पै हिमंत की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाली बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म कह जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत तुझी मत फत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय दतार जी गुरुद्वारा ननकाना साहेब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ बिछोड़िया गुरिंदर सिंह दार सेवा समाधा अपनी खालसा जी बख्शो हे रोटिया दी ओट गुरु ने आसर दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जियो दोए कर जोड़ कर अरदास तू भावे ताले रास हे गरीब नवाज जी आपने चल कावा अरदास पंजाब ने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश में संगत नु दर्शन कर दे के नासर उतार जियो बेहद बाणिया के पास ऐसे रागी सिंह ने आपके चलना जा सकी बात किसर कि विद्वान भी रहने अज को मेरी कथा प्यार की करो होइया भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी शोध के सच कर प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय नुकसान की कृपालता करो जी अगो तो शोध से मित्र बाणी साड़ी मर बुद्धि बख्शिश करो भी विवाद इस खुशी आप जी दख्शियां दाता पुत्र कड़ाप सारी देगा तैयार कर हाज दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संघ की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जपे बख्शिश करो दतार दुख कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश पर देश रखा बख्शे करो जी ये की बनवाज आप ये मक्खियां दाता जो लगा तुर सेवाया प्रवान कर ली सरदार आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैलियों संघा सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चटकर बख्शो अरे सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शन की पालता करो गरीब नवाज जी अमृत वेले तो लैके दातियां आई हैं साफ संगत जी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर तेते फिर भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गरीब नवाज कृपा करो सिख खालसा पंथ एकता स्वाग प्यार की बख्शिश करके सत संतोष दात बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो तथा हर मैदान दीवान फतेह बख्शन की पालता करो जी गुरगीब नवाज बख्शिश करो दूर दुराने कहा बैठिया वाला भी खिता कितने सरवण कर रही हैं सारे संगतान की हाजरी प्रवान करो घड़िया लिखे रहो सर आपने कृपा की संगत उद बख्शे संगत आपके चरण धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगलता संगत माया पेटा कर रही चरण प्रवान करो बख्श कर साहब जी कमाइया सबल करो कारज वाद बदलता सब संगत दिया शुभकामना समाधान पूरी करो जी मेरा तो घरे आओ सेवा प्रवान करो भुला चुका माफी बख्शो पित्र को नामे बख्शे बरहंत लड़ी वास्ते पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो रेंदे कार सवार के चरण तुरंत बनाओ सही प्यारे मेरे जिन्हें मेरा उसका नाम चेता हा नानक ना चढ़ी कला तेरे पाने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्ञा भई अकाल के तभी चलाए हुपं सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोझ है खोज जबद मैली
राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोए, ख्वार हुए सब मिलेंगे, भजे शरण जो हो। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पा, जो शरदा कर सेव दे, गुरु पार उतारन हा खंड।

चुकै बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला नित तंदा करत विहाय। चरण कर देखत सुन का थके चरण कर देखत सुन थके

पाए, तुर कर्म न पायो प्राणी, विन कर्मा क्या पाए। गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गत मत शब्दे पाए। नानक सा

हर सुख दाता सबना गल्ला का तिसनो त्याए दिया केव निमक घड़ी मुंह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनो सर्व कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बही है मुंह जोड़ी है सब दुख भुख रोग।

गुरमुख भिखिया नाऊ तिसके चरण पखाली है नानक हौ बलिहार जाओ। महला तीजा नानक करवर एक फल

हर रस फल राते नानका, कर्म सच्चा निशान पौड़ी। आपे धरती आपे हैगा राहक, आप जमाए पिसावै आप पकावै, आप भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै। आपे जल आपे दे छिंगा, आपे चुली परावै आपे संगत।

परविरत आप निर्विरति आपे अकथ कथी जय आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे।

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विपेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन।

नानक बिन सतगुरु सेवे जमपुर बद्दे मारी है। मुहे कालै उठ जाई महला तीजा। एक सतगुर की

जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगह पाए मान। जिस दी पैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा। नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए शब्द स्यों चित न लावई। जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिरै, एहनिस जलत बिहाए जो तिस भावै सो थीऐ। कहना किछु न जाए। महला तीजा।

मानस भरिया आने मानस भरिया आए जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए आपना पराया ना पछाणई खसम हो धक्के खाए जित पीते खसम विसरे दरगह मिले सजाए झूठा मद मूल ना पीचई जे का पार वसाए नानक नदरी सच मद पाई है सतगुरु।

तही प्रकाश हमारा पहो। पटना शहर बिखै पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हां, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनु पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नु मिलना है, मालक

जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै करनौ निद आवै ताई, सब थाई हुए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी, पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही, देख के अंडिट कीता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी, जिन्हां सिंघा सिंघणियां धर्म हे सीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी के सांसवासां नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी, पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी, प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, चिते आवे चिते आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचियारे आए, तो देव तेग पते बिरध की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले बोलो जी, सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दे राखे आप, वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दतार जीओ, श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शिश करो, हे निमाणियां दे मान सतगुरु, नितानियां दे ता नियोटियां दी ओट गुरु गरीब नवाज, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, आप जी का पावन पवित्र फुरमान है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए, दे मां वाक अनुसार सतगुरु जी अज आप जी ने कृपा बख्शिश कीती, आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी भाई हरनेक सिंह ढिल्लों, सुपुत्र सरदार भुपिंदर सिंह ढिल्लों, बीबी रीना कौर ढिल्लों, बीबी श्रुति सुब्रमण्यम सुपुत्री श्री निवासन सुब्रमण्यम, बीबी शांति सुब्रमण्यम, इस पावन सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर सच्चे पातशाह जी गुर मर्यादा अनुसार आनंद कार्ज होए हन, गरीब नवाज आनंद कार्ज दी मर्यादा नूं निभाउंदिआं आप जी के दस रहा पासों बेअंत बेअंत भुल्लां हुई आप जी ने खिमा कर देनिया, अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना, रहमत करनी सुभाग जोड़ी दे सिर ते सदा मेरा भरिया हथ रखना, ग्रिश धर्म दियां खुशियां खेड़े समूह अपना सुभाग जोड़ी दे झोली विच पाउणा, सदा दे लई चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना, कृपा करनी दोहां परिवारां नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी, आपसी प्रेम प्यार इतफाक भावना दी दात बख्शिश करके नवाजना, अपने चरणा दी प्रीत बख्शिश करना, ग्रिश धर्म दियां जिम्मेवारियां निभाउंदिआं होइआं सतगुरु जी सदा आप जी ने अपनी प्रेरणा दे विच रखना, रहमतां करके नवाजना, गरीब नवाज इस वक्त सुभाग जोड़ी ने खुशियां दे मौके आप जी नूं सुंदर पोशाके अर्पण कीते हन, आप जी भेट करो अंगीकार करो, सदीव काल पड़दे कजो बख्शिश भंडारियां चो कड़ा प्रसादी देग हाजर है, दर प्रवान होवे संगत विच वरताउण दी आग्या होवे जी, बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां तिल फुल भेटावां आप जी के चरणा विच भेटा कीतियां, समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनियां, सभना दियां अरदासां कबूल करनियां, सभना नूं दरों घरों चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना, सतगुरु जी इस वक्त आप जी कृपा करो, पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी, हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो, सही प्यारे मेर जिन्ना मिले आप जी का नाम चेता वै, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, दोहरा आ गया भई अकाल की तबै चलायो,

प्रोगनति और सोगनति जल जोगनति बहुपात चाक सत्वर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महासुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण की तिहन जिन्हों की विचार दर्शारण की पाई उस महानप्रभु के नाल जुड़िया रहे जिस महानप्रभु की कृपा सबका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस महानप्रभु के चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल वर्तित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण करी सत्कारयोग ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासो अज दे जिहड़े हम चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण करी गुर इतिहासिक इतिहास सरुण करी दसलो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: की सड़क उठवाए, कहीं कोर्ट पाथर विरट मिल जाए,
1: कई कोर्ट कौन पानी का तत्व, कई कोर्ट मंडल,
0: कई कोर्ट सत्य सूर्य नक्षत्र, कई कोर्ट देव दानव इंद्र से छत्र,
1: अगर सुनगरी अपना सुस्तारा नारायण जय जय पावा चंद्र निस्तारा,
0: कई कोर्ट राजस्व तामस शासक, कई कोर्ट देव प्राण सिमरत और शास्त्र,
1: कई कोर्ट की रतन समोदय, कई कोर्ट नाना प्रकार जंत्र,
0: कई कोर्ट किए जीव, कई कोर्ट गिरी मेर स्वर्ण सीव,
1: कई कोर्ट जग के दर प्रकाश, कई कोर्ट फूस शुक्र मैं
0: गाते मेरे प्रभु से दूर नानक आप अलिपत रहेगा दूर,
1: कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरसुर्ग निवासी,
0: कई कोट जल में जीव है मरे, कई कोट को जो निर
1: कई कोट बैठती खाए, कई कोट का लत खाए,
0: कई कोट किए धनहंस, कई कोट माया में चित,
1: जय जय भाणा चादर आखे नाम सती सब पैसे,
0: कई कोट भय बैरागी राम नाम सत्य लिव लागे,
1: कई कोट प्रभु को जलते आश्रम है बालम धनते,
0: कई कोट बचत सब प्यार किनको मिलो कब अभिनाश,
1: कई कोट माता सब खान साल नाम से लगा रहा,
0: किनको होए आप सुप्रसन्न नानक तेजन सदा दान दान,
1: कई कोट खंडिया खंड, कई कोट अकाश ब्रह्मांड,
0: कई कोट होए अवतार, कई दिवस किनो विस्तार,
1: कई बार सक्रिय का तार सदा सदा चेतन कार,
0: कई कोट पीने वो बात प्रत्ये हुए ब्रह्म आए समात,
1: अपना जाना कोई अपने आप नाने पर सोए,
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास तीन होवत आत्म प्रदास,
1: कई कोट सबके बेटे दरा ने हरा एक को निकले,
0: कई कोट नाम रख कीजिए अमर भय सर सदी जीवे,
1: कई कोट नाम गुण गावे आत्म रख सह चुनावे,
0: अपने जन को साथ साथ हमारे नान कोई पर बेटे के प्यारे, चलो करण कारण सब एक सलमान ही कोए, नानक बलिहार जल तल मैयल कोए, हरण करावन करने जो जो सिर्फ बाबत हो ही हो,
1: खेत में साफ कुछ अपने वाला यंत्र नहीं कहीं चारा वाला,
0: उसमें धार अगर रावे उसमें उठे उत्तम समावे,
1: उसमें उच्च नीच जो हार उसमें अंक अंक प्रकार,
0: अंकन देखे अपनी बढ़ियाई नानक समय रहे समाई,
1: सब पावे मानो कब पावे प्रभ पावे तब पास करावा,
0: कब पावे भी सास तेरा के प्रभ पावे तो हर गुण बाटे,
1: सब पावे तब सब सुनता रहे आप करें अपने बीच चला,
0: धुआं सरिया का आप स्वामी केले बिटते हैं सर जाने,
1: तो काट करावा नानक देखी और न आना,
0: और मानुष्य क्या हो आवे जो कि भावे सोई करावे,
1: इसके हाथ हो दादाती ले जो सिर पावे सोई करे,
0: जानक विद्या में रचे जी जानक आपन आप बचे,
1: अरे पूजा दर्ज सावा जिस माए चार फूल से जावा,
0: कृपा जी अपनी भगत दे नानक तेजन नाम मिले,
1: फिर मैं नीच चीज तो राज
0: पार ब्रह्म,
1: पार ब्रह्म रीब नवाज,
0: जाता दिन कछु ना आवे जिस प्रकार है जिस प्रकार वे,
1: सबको अपनी करा बसी ताका देखना घना दिल दी,
0: यो इन सब तिथि आज लगत जीवन ब्रह्म प्रकाश,
1: अपनी मन से आप बनाई नानक जीवा देव बढ़ाई,
0: इसका बल नाई इस आप करण करावन सड़क को नाथ,
1: अज्ञाकारी बंदरा जियो जो दिल पावा सोई पन जियो,
0: प्रभु ऊंच नीच में बसे प्रभु सो करक रंग हसे,
1: प्रभु निज चेत व्यवहार प्रभु काश तैयार,
0: प्रभु देखा ब्रह्म विचार नानक आप मिला वनहार,
1: प्रभु नित करा बंपाल प्रभु सोए रह दृढ़
0: प्रभु महाक्रोध विकराल प्रभु सरक की होत रवाल,
1: प्रभु सबकी
0: प्रभु हुए

0: सेवा कर पूरे नेता में किसको हो तरह पद स्वामी
1: अपनी
0: दूसरे गुरु का मन मान